0: सुश्र समझदारी को सेतु एफएम अध्यात्म ज्योति
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। जीवन जीवने कला श्री श्री रविशंकर जी को एक प्रयास आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजे सम्म

0: साँझ 8 बजेदेखि 8:30 सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योतिमा।
1: यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड।

0: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनाञ्जली।
1: कि एक सामान्य मनुष्य भी श्री राम की भक्ति में डूबकर भव सागर को पार कर जाता है और एक ज्ञानी संत भी श्री राम की भक्ति छोड़ने के ख्याल मात्र से संसार सागर में ताउम्र मछली की तरह तड़पता रहता है। राम नाम ही संसार सागर में मुक्ति का द्वार है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े दयालु हैं। उनकी उदारता और करुणा का बखान वेद पुराणों में है। उन्होंने शबरी, जटायु और अहिल्या जैसे भक्तों को मोक्ष प्रदान किया और मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे दुष्ट राक्षसों का संहार करके उद्धार भी किया।

तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार सागर में भांति भांति के जीव हैं, हर जीव की अपनी चाल है। कुछ जीव जल में विचरण करते हैं, कुछ थल पर चलते हैं और कुछ आकाश में उड़ान भरते हैं। पर तुलसीदास के जीवन की गति सिर्फ राम नाम का जाप है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में श्री राम ही उनका भरोसा है, श्री राम ही उनका बल है, उनका विश्वास है। श्री राम के स्मरण मात्र से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनका मंगल होता है। तुलसी हर जन्म में प्रभु राम की भक्ति में डूबना चाहते हैं।

तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति श्री राम से प्रेम करते हैं, जिनका विश्वास श्री राम है, जिनका जीवन श्री राम का भजन करने से ही चलता है, वो श्री राम का स्मरण करते हुए

तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके शरीर में श्री राम का स्मरण करते वक्त, धर्म युद्ध में शत्रु का नाश करते वक्त, दान करते वक्त और गुरु की चरण वंदना करते वक्त रोमांच और खुशी नहीं होती, उनका इस संसार में जीना व्यर्थ है।

तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य की आंतरिक एवं बाह्य आंखें जागृत है, जो काम क्रोध मोह माया से मुक्त है, वही व्यक्ति कभी भी मछुआरे केवट का उद्धार करने वाले प्रभु राम की भक्ति को नहीं त्याग सकता, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु राम ही सबके तारनहार है।

0: बालिकालाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: FM अध्यात्म ज्योति शान्ति रेडियो।

0: गोल्ड पैलेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज, मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: अनि मलाई

हस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

0: मैं और मेरी कहानी।
1: ये प्यास क्यों नहीं बुझती?
2: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: अरे गधो सुर में रेको सुर में भटको मत भटको मत। जब दूल्हे राजा आएंगे तो लोगे तुम बलाए
1: लोगे तुम बलाए।
0: अरे नालायको हम नहीं तुम
1: अरे नालायको हम नहीं तुम
0: तुम लेके बलाए फिर देंगे। अरे देंगे दुआए
1: देंगे दुआए।
0: शाबाश तो बनी रहे जोड़ी क्या।

0: Flashback.
1: सुनो सुनो, अपने कानों में तेल डालकर सुनो कि बंदा अपने प्यारों को आदाब बजा लाता है, अपनी अम्मा और अपनी जोरों के सर पे हाथ रख के अपनी कसम दोहराता है।
2: या?
1: ये

0: गए चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारों के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

0: सेना जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

है लानत चोर बाजारी, ये दौलत है बीमारी, है लानत चोर बाजारी। अरे छोड़ दो मारा मारी और फेंक दो छुरी।

0: ये झगड़ा प्यारे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे,
1: नहीं

0: जय माता दी गोल्ड पैलेस, शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू श्रेष्ठ टेलरिंग, रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज, मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: वो मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: वो
5: अनि मलाई

के तपाईलाई पूँजीको आवश्यकता छ? साना मझौला तथा लघु उद्योग व्यापार व्यवसाय स्थापना एवं विस्तार गर्न चालू पूँजी तथा स्थिर पूँजीमा हामी सरल ब्याज दर छिटो छरितो तरिकाले लगानी गर्दछौँ।

उसने क्या करूं, क्या cool है हम, क्या cool है हम, खुल्लम खुल्ला मिलना चाहे, चोरी चुपके मिलना चाहे, मैं क्या करूं, क्या cool है हम, हर लड़की का मैं हूं desire, लड़की बोले I'm on fire, होना ही था, क्या cool है हम।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

वापस आए उठाना पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे और तालियां जोरदार एक साथ।

मंडल के जितने भी सदस्य हैं, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से कथा सुन सके। और जब कथा सफल हुई है कि नहीं, आपको आनंद आया कि नहीं भाई? जब सबको आनंद आया, सफल हुई कथा, तो इन सबके

और अब देखिए श्री राम चले गए थे, राज सिंहासन किसको मिला था? भरत जी को, सब कुछ उनका था। और श्री राम ने खुद कहा था कि मैं कह रहा हूं बैठ सिंहासन पर, यहां आज जो है वो तो है, दूसरों के पास जो है वो भी ले ले, लेकिन यहां उनको सब कुछ मिल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो

था। माँ सीता को वनवास नहीं हुआ था और दशरथ जी ने साफ साफ कहा था कि राम के जाने के बाद भी जैसे रहना है वैसे रहना, यहाँ रहना है यहाँ रहना, पिता के घर रहना है पिता के घर रहना, जो मन वैसे। लेकिन वो फिर भी वनवास में

0: नेपाल टेलिकम को फाइबर इंटरनेट नया चढ़ान करना तथा मरमत करना घरमै बसी बसी 198 डायल गरे पुग्छ।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
2: FM अध्यात्म ज्योति 104.8

यहाँ ऐसे कितने भक्त हैं जो अगर ठाकुर जी मिल जाए, सच में मिल जाए हमेशा के लिए, तो संसार छोड़ सकते हैं। क्या बात है।

कौन है जो ये दृश्य आंखों के सामने ला रहा है? एक बार सोचिए, आप सबके पैर अपने आप नहीं उठे तो मेरा नाम बदल देना कि बस रास्ते से जा रहे और सामने से कोई काली कमली पहनकर आ रहा है।

चाहिए। मेरे हिसाब से आप ऑलमोस्ट सभी खड़े हो गए हैं, तो एक बार मेरे सब साथ नृत्य करेंगे। उठाओ पूरे पूरे हाथ, एकदम लंबे लंबे, पीछे तक, मैं जैसा करूं वैसे करना है, एक साथ।